0: पैसे।
1: क्या कर रही है घर पे आके? दौलत
0: कौन?
1: पता नहीं, दारूपी की गाड़ी चला रहा था। मट्टी मट्टी बची हूँ मैं।
0: हाँ तो ये साला मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक फीचर फ्रॉम सारेगामा।